0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेले की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जोई 100.7 दोस्तों। और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई और आप सभी कैसे हैं आज? आप सभी ने अच्छे से दिन की शुरुआत की है या नहीं? और वैसे भी आज तो दोस्तों सैटरडे है और छुट्टी है ना दोस्तों? यस। तो आप सभी अपने अपने घरों में रहकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और लेकिन मेरे दोस्त जामा जैसे वे तो अपने काम के लिए दुकान खोलनी है, उनको काम करनी है। तो वो तो अपने काम पर अभी लगे होंगे। और अभी उनका मैसेज टाइपिंग हो रहा है। यस। तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम जो 100.7। तो चलिए इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। बहुत ही खूबसूरत गीत। यस, गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, एक प्यारा सा गीत। और मैं आप सभी का इंतजार करूंगी इस एफएम जो 100.7 पर दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश का। और यस, तो चलिए फिलहाल सबसे पहला इस खंड का गीत सुनाना चाहूंगी राहत फतेह अली खान और आशीष कौर के आवाज में गाया कि तेरे बिन मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं जो आपको गीत सुनाने सुनाने वाली थी ना, वो थोड़ा यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ हो गया था। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अभी जो मैंने आपको गीत सुनाया था ना दोस्तों, चुरा लिया है तुमने। शान और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। और एक खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए मेरी तरफ से, कि मेरे दोस्त आरजे टेम्स भी हमें सुन रहे हैं। उनसे मिलकर बहुत दिन, मतलब उनसे ना मिलकर बहुत ही दिन हो चुके हैं। पता नहीं कब फिर मुलाकात होगी अपने दोस्तों के साथ। खैर, जो भी हो, वो कहीं भी रहेंगे, वे अपना ख्याल रखेंगे और अच्छे से रहेंगे, और यस, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। यस, और अगला गीत जो मैं प्ले करने वाली हूँ, वो मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगी, हमारे दोस्त आरजे टेम्स के लिए। और आपके प्यार भरे संदेशों का मुझे मुझे इंतजार है दोस्तों, ठीक है। आप सभी आइएगा मेरा साथ देने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए इस एफ एम 100.7 पर दोस्तों। और एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों आप सभी से, कि दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है, और जो किस्मत में नहीं होते, किस्मत उनसे मिलाती क्यों है ना दोस्तों। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं तेरे बिन, मेरी तरफ से कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में गाए गीत, मेरी तरफ से आप सभी के लिए और स्पेशली हमारे दोस्त आरजे टेम्स के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जो मैं आपको सबसे पहले इस खंड का गीत सुनाना चाहती थी वो था ये लेख यस, फिलहाल जो भी हो आप सभी को गीत पसंद आया होगा, कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत दोस्तों। यस, और हम चलेंगे अब अगले गीत की तरफ जल्दी से, और यस, हमारा समय पूरे 12 बजे तक का है दोस्तों, और हम चाहते हैं कि आप सभी का दिन समय अच्छे से बीता रहे दोस्तों हमारे साथ इस FM ZOY 100.7 के साथ दोस्तों। और मैं चलना चाहूंगी दोस्तों अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ। मेरे दोस्त जामे की तरफ से संदेश आया है। जामयान, ये साजेवियल नमस्ते सुप्रभात अरुंतिया, ओ नमस्ते जाम नंगपो सुप्रभात, ओ अमज अमा सोंगिन इड्यूटी पुई आरजे मा पुई सेगमेंट आले आरजे आंगई आंगई आ गई थे।

बल दोस्तों, आंखों से तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। आप सभी को कुमार सानू और अलका याग्निक के यस आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, लेकिन अगला गीत सुनाने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ हम चलना चाहेंगे दोस्तों। यस, जैसे कि हमने कहा था कि इस गीत के बाद आपके संदेश की तरफ हम चलेंगे। तो संदेश है आप सभी के लिए। यस, हमारे आरजे टेम्स की तरफ से संदेश आया है, वो है, नमस्ते मेरे दोस्त, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त, आप कैसे हैं बताइए। आजकल क्या हाल चाल चल रहा है? लो मोदे उदेव लो प्लेजर। अगला गीत मेरे दोस्त वाल फिल ग्रुप के मेंबर मिस्टर मिंग मोइतियांग उरी साइलो के वाला और एलारा मामित ही अरे रियाओ मई अदम छा एम ओ ये यस एलारा मामित ही अरे तो पा तो वेल और यस और मेरे दुश्मन माम मुनपुती पीसी जेसिका खोवेल लव ओम लव बेर तान लियान दिन नहीं अरोंदी आ चुआन चुआन मेरे दोस्त तुई रियाल रंबो रमा अंगे ओम चीन खोप मै एफ एम आ अरे लेन तम मक तुर ही अमा शरेंग चुंगिन अगला गीत रमले अच्छियान ते जोंग जोंग तान जामतान पो ओ अरोंदी एनी ओ आर जे टेम्सन लारों थन सक दे दो मै चे वा ओ लो मुम छीन ले मई। और तो दूसरा संदेश आया है दी आई की तरफ से, दी आई हियान आर जे वी एल इफर सेगमेंट आ खान इड्यूटी पुईटेन इड्यूटी अनफल सकलौ से एम नी

Antes de thấy chứ em nghĩ thế rồi thì ê khai chứ thằng năm bằng đi lâu ấy. Chuan, a glass and dish, hey. Soma, call ni hian. Arje du tak in, in la plate a om zia, shivik lau ma ila a moi tang e, til ka lau zot lok ce o, ni tin mai khan dar som pakat le chan ve ma deo a, primary channel zaipol huna, chan pui YMA, zaipol te la sak, All India Radio ti la kha a phwa tu ka shit cha ka min lo shil thei chuan ka lom hle ang a ron ti ani o nikina ka ka lo en ang mo ke pon ka shit cha lo a min lo ngai dam la ka lo shil don che nia o chuan khong e kung te message ka o kung te hian a chem of veli u chuan khom ma chem iron aron pe le chem Asia em te ron di ni mila ron pe chi alawa a boy yang ti boy law ma yang a boy thak e me ron kal hi chan kan boy vek zel za mala yan va shilwe a va shilang ti tu ka thau khop mai chuan Arjevil imo zama hian Arjevil Imo ka hero number one Ivan ni CM next song RJTM Stanley ka melma number one tour pu tour nge tangval tour siat lo so matan le ita no rantini ole eng pa ni se ma hunite ke valate messenger on thing le av lekin main ka sandesh is git ke sunane ke baad chalna chahungi theek hai to chaliye आप सभी के लिए प्यार भरा गीत मैं सुनाना चाहूंगी हैया हो क्या मस्ती क्या जादू कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज में गाया गीत है और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सुकून तब मिलता है जब सब ठीक होता है ठीक है सुकून तब मिला जब मैंने हर चीज को ठीक होना जरूरी समझना छोड़ दिया ठीक है तो चलिए तो आप भी इस तरह समझिए है ना यस तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही मस्त गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, यस आप सभी को कैसा लगा हमारे पेश किए गए गीत? यस, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ. और यस, हमारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है अब. और संदेश मैं पढ़ना चाहूंगी. माँ मुनिहियान, यस, आज आंखों से तूने क्या, आंखों से तूने किया आखान मिन छछुआ के छछुआ से आगे, इसलिए तो मैंने आपके लिए पेश किया है माहून. आरजे टेम्स खा कचाऊ रंदिया निचू. आरजे टेम्स खा लो मे मो के बाल हियान ओ वी एल कऊ पत मेले. RJ James ta liao liao o ron tia ni bu ke valan kung te hian o kung te message ka ka tia sua lo ka ti pa lutu ko kung te sorry sorry ka ning eh om o o ka tia chak lo meng o kung te John RJ James hian RJ VL next car unau pa vi kung tia lir lutuk lo na dam doi mum lian katso ngal o bilbo ngal don aron diani James RJ James hian van kan van ui don ve o swan ओले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल आप सभी का साथ देने के लिए. स्वान टेम सले माम होनी तिपो का लव इनका उदान खा कन लव लम स्वाल नोक नोक बोक कनी ओ मा एंग पोचनी से अन मानी खा नन अन लव चियांग दोने नी स्वान छतुरा गाय में यंग ओ ओले और दोस्तों चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं. और अगले गीत सुनाने से पहले एक शब्द, एक लाइन में आप सभी से कहना चाहूंगी कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है ना दोस्तों. तो चलिए सुनते हैं लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है। जी तो करता है कि आपको यूं ही गीत सुनाते रहे, लेकिन क्या करें दोस्तों, समय की पाबंदी के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम वादा करते हैं आपसे कि हम जल्दी वापस आएंगे दोबारा हिंदी के खंड को लेकर दोस्तों, यस 2 बजे, ठीक है दोस्तों। और आप हमारा साथ देते रहना, हम चाहते हैं कि आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे, खुशियां और बहुत ही आनंद के साथ दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय अच्छे से बिताएं, यस। और जाते जाते मैं एक बात रखना चाहूंगी सुकून के बारे में दोस्तों, यस। सुकून बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, है ना, यस। अगर हमें किसी में भी अगर हमें सुकून नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों वहां पर प्यार नहीं है, है ना दोस्तों, यस। और सुकून से मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी जाते जाते दोस्तों, यस, कि उसे छूना नहीं, बस उसे देखना सुकून है। दूर रहकर भी उसका साथ होना सुकून है। ना कोई जिद है उसे पाने की, ना कोई दावा है, उसकी एक झलक में ही खो जाना सुकून है। वो सामने हो तो दिल और भी खामोश हो जाए, बिना कुछ कहे उसका समझ जाना सुकून है। ना रिश्तों का नाम है, ना कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है। वो खुश रहे कहीं भी, यही दुआ है हमारी, उसकी खुशी में खुद को भूल जाना सुकून है। मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात है, हर ख्वाब में उसका आ जाना सुकून है, है ना दोस्तों, यस। तो चलिए इसी तरह हमारा प्यार यूं ही बरकरार रहे। मैं जल्दी वापस आऊंगी दोस्तों, आप कहीं मत जाना। और यस, मैं आप सभी से बातें करने के लिए मैं 2 बजे तक हाजिर रहूंगी, ठीक है। आप सभी को फिर से वापस आना है, ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखना, और ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम, और यस आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए आरजे वीरे की तरफ से ढेर सारा प्यार। और आरजे टाइम्स को भी हम बहुत ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये आखिरी गीत आप सभी के नाम, और चलती हूँ इस आखिरी गीत के साथ। तो ये गीत आप सभी के लिए।

हेलो, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7 दोस्तों, और हिंदी के खंड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। और आपके साथ हिंदी के खंड में फिर एक बार आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वियली दोस्तों। और आज के लिए हमारा ये आखिरी खंड है दोस्तों। मैं 2:30 बजे यानी 2:30 तक आपका साथ दूंगी, और 2:30 के बाद मैं आपको इस एफएम 100.7 से ना दोस्तों छोड़ के चली जाऊंगी। तो ये जो थोड़ा सा समय है हमारे पास, आधे आधे घंटे का समय, को चलिए बहुत ही अच्छे से चलिए बिताते हैं। और मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं आप सभी को गीत सुनाना चाहूँगी। नीति मोहन की आवाज़ में गाया गीत है तू ही तू हर जगह। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय हमेशा अच्छे से बीतता रहे। और वैसे भी मुझे मतलब क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका समय दिन कैसे बीत रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा दोस्तों। यस, कोशिश कीजिए अच्छे से बिताने के लिए। अपने दुख दर्द सभी को भूल जाइए, हमारे साथ एफएम 100.7 के साथ आ जाइए बातें करने के लिए, प्यार भरे बातें करने के लिए। यस, हम हमेशा आपका साथ देंगे, आपको कभी भी अकेलापन महसूस करने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है? यस, तो चलिए चलते हैं गीत की तरफ। और यस, तो चलिए फिलहाल सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत तू ही तू, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस निधि मोहन की आवाज में गाया गीत तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों. यस, मुझे आपके प्यार भरे संदेशों का इंतजार है और जैसे कि मैंने कहा था कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा. यस, और हम चाहते हैं कि बस मैं तो चाहती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीते, बहुत ही खुशियाँ और आनंद के साथ. दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि आपको ज़िंदगी में ना कोई भी ऐसा दुखी करने वाला कोई चीज़ आपके साथ ना हो, आपको कोई भी बुरे चीज़ आपके साथ ना हो. मैं नहीं चाहती ये सब, बस मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें. लेकिन आप ना हम जिंदगी में रहते हैं, सुख दुख तो आएगा, लेकिन हमें एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनना है ना दोस्तों. तो चलिए हम अब अगले गीत की तरफ चलेंगे. अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को, सुकून. यस, सुकून ना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो जैसे कि मैंने कहा था कि उसे छूना नहीं बस उसे देखना सुकून है, दूर रहकर भी उसका साथ होना सुकून है. ना कोई जिद है उसे पाने की, ना कोई दावा है, उसकी एक झलक में ही खो जाना सुकून है. यस, सुकून ही ऐसी चीज है ना दोस्तों, क्या कहे. वो सामने हो तो दिल और भी खामोश हो जाए, बिना कुछ कहे उसका समझना समझ जाना सुकून है. वो सामने हो तो दिल और भी खामोश हो जाए, बिना कुछ कहे उसका समझ जाना सुकून है. ना रिश्तों का नाम है, ना कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है. वो खुश रहे कहीं भी, यही दुआ है हमारी, उसकी खुशी में खुद को भूल जाना सुकून है. आप मेरे पास आप मेरे बातों से सहमत है या नहीं? मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात है ना दोस्तों, हर ख्वाब में उसका आ जाना सुकून है. तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं मेरी तरफ से, सुकून आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए.

मरदोस, उम्मीद है आप सभी को सुकून गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, जिस गीत को सुनकर हमें बहुत ही सुकून मिलता है, उसी तरह आपको भी इस गीत को सुनकर सुकून मिला होगा, है कि नहीं दोस्तों? यस और तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों से कि कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना रहेगी। जो था उससे मोहब्बत थी, जो है उससे सुकून है, जो है उससे सुकून है मुझे, ठीक है? आप दिल को मंजिल अब यस अब दिल को मंजिल नहीं चाहिए, बस सफर में थोड़ी सी शांति चाहिए। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहकर ही अच्छी लगती है, क्योंकि हर चीज मिल जाए तो दुआओं की अहमियत कम हो जाती है। अब ना किसी को पाने की जिद है, ना किसी को खोने का डर। जो मेरा है वो रहेगा, जो नहीं है उसका जिक्र भी नहीं। तो चलिए, यहाँ पर संदेश आया है मेरे दोस्त भी कुंगते की तरफ से। कुंगते यान सुकून सु एंगे नी सुकून सुकून सुकून कशे वेलाओ किस्मत पो कशे लाओ। लगो गुल मेला कुंगते सुकून सुमो इशा थियाम दान चुआन उची पी अले कई मा इनकार खा सुकून नी मई। Zaman na RJBL bu in zet zong isek men hi alung oi thak lo e are lo lulai lutuk maya next are lulai lo lutuk mai a next song du tu du tho takin itan sia big ria win kan than sak na pange tlo takin ho ang che o khwa nu mal som na tam tak dungin trisel na cha nei a fm zo oi ri moi ru na kanin tong le thwai don nia ne de rozam ka ngai the lu tuk cheo fm zo oi hi mo anwam kati kati ber koi mo na po kalila mo fm zo oi ai anwam ti hi ka nei ngai lo anwam kati chuan good boy hian hey zo me tui deu deu mai hi aron thona chon hu hun man nuam le aron ti a chuan hey fang ma te mai te mai mai enge ka mai te te

वेल दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी से अलविदा कहने का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। क्या करें दोस्तों, दिल तो करता है कि आपको यूं ही गीत सुनाते रहे, लेकिन हमारा मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों। ये तो आपको ही मतलब आपको भी पता है, लेकिन जब तक हम नहीं मिलेंगे इस FM Zone 100.7 पर दोबारा, प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। और कुंगतेहियान इलाका सुआन और निचिना कुंगतेहियान खुआन सुकून सु एंगे नी सुकून सुकून कैसे बेलाओ किस्मत पो कैसे लाओ खुआन उरवाद लाओ दिए मो जापा चंग तो माला थी न मो अरंती ते का अनिलाओ लुटुक ओ कुंगते लाओ रिकॉर्ड लाई दूले लाओ थंडोनिया का उसु मासे तुने मी है मी खानूर लाओ दी ती बे जो जो पाचंग तो माला ती बे का चुस कुंती न लंपंग का अनिल वा चुआन इलाका चुआन के चुडी दिल को सुकून मिला है ही चुडी चुआन के पो इन मो चुआन Yes, और तो दोस्तों आप सभी को आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है। और मैं कुंगते को एक बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझसे सुकून के बारे में पूछा, तो सुकून के बारे में बस ये कहना चाहूंगी, अगर यस कुंगते उची पिया लेकर निकार खा सुकून निकती खमो तो उसके लिए मेरे पास एक लाइन है जो मैं कहना चाहूंगी सुकून के लिए दोस्तों मतलब कि ना रिश्तों का नाम है ना कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है, ठीक है। कुंगते चे थिया मैम ना रिश्तों का नाम है ना कोई बंधन है, बस यूं ही उसे चाहना ही सुकून है। और कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है तो इसको कहते हैं सुकून यस, अगर आपको सुकून का मतलब जानना है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे जब हम दोबारा वापस आएंगे इस FM Zone 100.7 के यस 100.7 पर। दोस्तों हम ढेर सारी बातें करेंगे सुकून के बारे में, प्यार के बारे में, यस। और मैं भी एक दोस्त से वो ऐसा वाला सुकून प्यार करती हूँ जो आप भी मुझसे करते हैं, जिस तरह आपको भी मुझसे बातें करते हुए इस FM Zone 100.7 से जो जैसा वाला प्यार करते हैं ना, जो सुकून मिलता है ना, वही वही मतलब उसी को सुकून कहते हैं, ठीक है तो चलिए इस गीत के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगी। आप सभी को मेरा साथ देने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है। जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी को अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, ठीक है। कभी भी दुखी नहीं रहना है, दुख नहीं मतलब यस दुखी नहीं होना है, ठीक है यस। तो चलिए आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 और हिंदी के खंड में आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। तो दोस्तों मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर। ओ जान गुड बॉय हियान मैसेज और थोन ले आके चार मनेंगे ओ अजय वनल चाटनी चाट इन ओ के चार तो लो मैं ओ हुन अ टॉप डोन सी आ गलोम नु तो कनिया ओ गुड बॉय आपके संदेश के लिए। तो फिलहाल आज के इस शाम को आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा वाला शाम हो, तो इजाजत दीजिए अजय वेले को, बाय बाय पे को ओ जाम नंग पो बाय बाय ओ कुंते बाय बाय गुड बॉय बाय बाय ओ तो चलिए आप सभी को मेरी तरफ से ये आखिरी गीत आप सभी के नाम और अजय वेले की तरफ से बाय बाय, टेक केयर बे को ओ।

0: tu zong zong te kan program in lo ngai thak sak awang in lom thu kan soya primary channel a changa program lak chon kan ngai thak chhun zomang program puang tu hi vilal ngai zwali kan ya engineer duty hi joseph lerim ruata ani fm zawo hi tlai dar li le mini som ni pariata kan lo let li anga min lo ngai thale cheu turin kan soma cheu
1: zolani tuna chuan news bulletin hindi a puan delhi changa lak chhon ilo ngai thang u
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीनों जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर में पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया।

0: होगा।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पिछले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से पराजित किया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी ने पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम

एफएम गोल्ड 100.1 सुन रहे सभी साथियों को सीमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और शुरू होता है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है जी मन भावन। आपके मन को जो भाता है आप हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। अब आप मेल कैसे करते हैं? fmgoldair@gmail.com पर। और हम आपके जो संदेश हैं आपके अपनों तक पहुंचाते हैं और अपनों तक पहुंचाते हैं। कई बार आपका मन करता है कि आप अकेले ही कोई गीत सुने, तो उसके लिए भी आप बहुत बहुत वेलकम है जी, स्वागत है आपका। एक बार दोबारा सुन लीजिए fmgoldair@gmail.com। इस पर आप अपना संदेशा जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। और आज शनिवार की दोपहरी आपके साथ मन भावन प्रोग्राम में आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने दोपहर का खाना जो है यानी लंच कर लिया होगा और आप अपने रेडियो के साथ मुस्कुराते हुए हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तो ये क्योंकि आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है, हर बार मैं अपनी पसंद का कोई गाना पहली बार चलाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपकी फरमाइश ही ले लेते हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल, इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। और आप भी अपना इसी तरह संदेशा भेजिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपना संदेशा भेजते हैं और हम आपका संदेशा लेते हैं। लेकिन कई बार आपको भी बुरा लग जाता है जब आपका संदेशा नहीं पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश है कि जरूर सभी के संदेशे लिए जाएं। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी साहब हैं, इन्होंने भी अपना संदेशा भेजा है। और इसी तरह मैंने आपके सारे जो मैसेजेस हैं उन्हें लेना है और इसके साथ साथ आपको बहुत खूबसूरत गीत भी सुनाने हैं। तो पहला गीत आपकी नजर करती हूँ, बहुत सुंदर गाना है, अपने जमाने का बहुत चर्चित गीत।

नमस्ते, आकाशवाणी एफ एम जॉय 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे ज़ुआल बोई। वेल दोस्तों, आज का ये हमारा खंड यही शुरू होता है। और जैसे हम जानते हैं, आज सैटरडे है और पूरे दिन उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा। इस पूरे हफ्ते में यही दिन होता है जहां हम अपने मनमानी कर सकते हैं, अपने मनपसंद की चीज जो है वो कर सकते हैं, हमारे पास पूरा फुल फ्रीडम होता है। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत ही मजेदार हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ आपके प्यार भरे एसएमएस का मुझे इंतजार है दोस्तों। जे ललजा मते मिंगमोयते ते विकुंग ते ते kanti ze langki walate oh anron in anron in lar anron in lar swak trip to ti kshia chu van swari nan mani nga pai nei a thule hla te hi an fun nem ve to a ve zong te hin nga ve to an kum hian a chal del ve to mon ni hawi chu chu wang chuan anron lang le tliar tliar don ti kha kshia a chumi nga pa chuan in hindi lamoi tak तक देखा करना होगा इस दौरान नहीं। तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ। और इस वक्त मुझे जितने भी सुन रहे हैं आप सबके लिए मैं ये गाना प्ले करूंगी। और इस गाने में किरदार निभाया था ऋतिक रोशन एंड हमारी स्वीटी कियारा आडवाणी जी ने। और फिल्म था वार टू से ये गाना। बेहद मुझे पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर पसंद आए। चलिए सुनते हैं इस खंड की शुरुआत के लिए आवाज आवाज।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था आवाज जावा वार टू। फिल्म से उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। ओ मैं मोहिते रन लंग मसब पेरा मैं मोहिते हिजू का फेवरेट कलर तो पमा ही सुवान सो कलन रोल रोल हिया ना इंसुम जोला वो रन लंग हाल छी ना जोल बोई नमस्ते ड्यूटी नुआम ले रन ती आ अमिंग अंग अंग्यानी नमिंग मोई दोन ती ही कच्चियांग तकापो हिया मैं मोहिते हिजू chuanin oh he ta hianin hei ron lang tur au me ka ming chu ka sei lo nga ron type na samaya a ron type zo hun kan nga ka nga chumi chung chuanin la pakhat ka no ngai thlanga kan ngai thlak chung chuanin a in alo type zo man ve e mang chumo to chere sunte he do so ye bahut hi pyara song hai aur film hai bheriya jisme Varun Dhawan aur Kriti Sanon ji ne kirdar nibhaya tha aur ye jo गाना है इसके संगीतकार है अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य और सचिन जिगर की आवाज में अपना बना ले पिया। चलिए सुनते हैं मिंग मोई देतान सियाल थूम लुतुकिन। ओ

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हवाएं, जिसमें किरदार निभाए था हमारी अनुष्का शर्मा एंड शाहरुख खान, और फिल्म के बोल हैं जब हैरी मैट सेजल। तो चलिए, आप हमारे साथ लगे रहिएगा, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है दोस्तों। मिनट सोमबाग वेल बा कन्ने तो लवा स्वानिन ये वो इन कन सेगमेंट ही अनहन कन दू खोप लो खोप meya segment ni gan nei do na hindi a hianin tu na dar ruk kling ania ti chuanin dar kua kron kir le so do na ni chu wan chuanin dar kua a ka chuanin in sms te pu kha ron lut le sur sur tu ra ka nga ya

chu mi chung chuanin FM zo oi ngai thak pa khani in na tool te kalau thokula inkom du te tan pon inkom bana te pokha mi ro enjoy zel theini o ke ni lampang chu kan la ri chu chu don ti kha kan han soi pa ani chu te chali aage badhte hain next time sunenge ek bahut pyara sa geet aur ye shayad aapne kai baar is gaane ko suna bhi hoga aur mujhe bhi bahut pasand hai and especially is गाने में कैटरीना कैफ की जो साड़ी है ये तो मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी प्यारी साड़ी है और उनके फिगर के साथ ये तो मैं क्या कहूँ लाजवाब है. इसलिए इस गाने को सुनते वक्त आप कैटरीना कैफ का जो फिगर है और उनमें जो एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी है कितनी जच रही है ये आप जरूर देखिएगा. एक ना एक बार अगर आपने कभी इस गाने को नहीं देखा हो तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर देखें इस वीडियो को. तो चलिए ये जो गाना है आप सबके लिए मैं प्ले करूंगी एंड स्पेशली कैटरीना के जो फैंस है आप सबके लिए एंड इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं आपके लिए. और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है तेरी और

तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी और आपके प्यार भरे एसएमएस के लिए बहुत शुक्रिया. ओ इजेल एजाम ऐसा मिन वहन वेत लक मैसेज और दालिया श्राम आहे इनखोम कल तो तुर खमो आज जो बोल ने ते इड्यूटी हुन तुर ही कन हाउ टू ते बोला करोत मे दो न मनी ले इनखोम जाना ड्यूटी हुन न हुन श्याम सकलो तुरिन सुतलो सोन कर इनखोम बे पो ही एक मालवाई स्वाते मी दो जेले जामिन खोम वांग वांग रो ओ नुआम तक खान इसवाल तेन फाइंग आई कती खा ओ दार को आकादिन मुले छेवांगा इंती तूर देखा लो तिसंग संगुला स्वानिन हेल मोय तक नेन हियानिन दुन सेगमेंट तान तान स्वानिन का गुड बाय दोन से उनी ओ. तो चलिए दोस्तों, एक प्यारे से गीत मैं आपके लिए प्ले करूंगी. ये है तुम जो आए और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए. जेल तुम थे नान खान खान सका एस एम एस मेरो थोन तु तेले मिलोंगाई थे तू सोंग तान खान इन कथन सक फिक से उन्हें. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7 आपके साथ है आरजे ज्वाल बोई.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्त

0: टीकाकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी,
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
0: जी,
1: तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलते, उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
0: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण,
1: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले,

0: पायलट है। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता है। अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है, जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है।

0: पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं। अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहोगे तो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT है, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई,

0: आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको पहले आदिवासी बोला

0: जाता है रवि वनवास
1: जनजाति
0: जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं। ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है,
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया।

0: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव
1: मतलब
0: रहती है।
1: हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो एमएसएमई आप देखिए ना, एमएसएमई सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है। तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ
0: चलो, एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है।
1: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
0: जी,
1: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
0: जी,
1: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, उसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
1: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
0: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
1: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
0: जी,
1: टिक्की वाला,
0: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
0: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
0: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
3: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
0: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की, और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं, तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी, तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं, और जब बिल्कुल आप पिछले जो हो गए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
0: सर्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
1: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
0: जी,
1: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ू, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होंगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
1: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार आपके साथ में लौटी हूँ, आपके आरजे ज़ोल भाई। और ये आज रात का हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ इस पूरे खंड में आप मेरा साथ देंगे। अपने एसएमएस हमें भेजना शुरू कीजिएगा, एंड यस, आप अपने मनपसंद के गाने जो है वो भी मुझे भेज सकते हैं। आप अपने मनपसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इन दो जोंग तिपोखा इन रन थंग थे नी ओ सुबंग सुन एसएमएस तो मखा रन लार ले सुप सुप तो मे रोले। इस खंड की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही प्यारे गीत के साथ। ये जो गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, फिल्म है तू मीठे फिल्म है मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, जिसमें हमारे शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज ने किरदार निभाया था। एंड ये गाना बहुत ही प्यारा है, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए। तो चलिए सुनते हैं मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।

तो दोस्तों यहाँ मैसेज आया है हितेंद्र दास जी का. उन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग आरजे जी, नमस्कार, हाउ आर यू, वेरी नाइस प्रोग्राम इन सॉन्ग शो, माय फ्रेंड आकाशवाणी मेरी जान है, एफएम जो बैंड 100.7, इफ पॉसिबल देन प्लीज प्ले द सॉन्ग ऑफ टिप टिप बरसा पानी, और मूवी का नाम है मोहरा. डेडिकेटेड टू ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी आइजोर परिवार, देन माई फ्रेंड्स आर मीनाल, दुर्गेश, शिवा, महाराज, भाईकन, भाईकोन, अमल, बिमाल, रिकी विलिक एंड नारायण. ओ वाव, हितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया प्यारे एसएमएस के लिए. एंड इस गाने की जो आपने फरमाइश की है मोहरा फिल्म से, टिप टिप बरसा पानी, ये हम जरूर सुनेंगे. एंड आपके ये जो प्यारे प्यारे दोस्त जिनका आपने मेंशन किया है, इन सभी के लिए हम डेडिकेट करते हैं. आप हमारे साथ लगे रहिएगा. स्वान लल दिन पुई अफल कौन टंगन आरजे प्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लोंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान के छियान ते वेंग शंग शंग मी ते आर सी अथलुआ ngam wan za wa rin mo e wal pu ya a a chin chin na a lo ma te te pu ye te tan le pa pa ri pu le kung te le ming moi te a tan le ki wal tan ron di ni FM ngai sang em em tu mai lal din pu efal kon hian in thane maron na ngai thin khop mai a o a chian te zong zong mai ba ka FM zo oi family te tan te kameron a thlan sak ni in ka sia a kalom kan lom em em ani o ti swan o he SMS te hi kan chhar dan hi du nge kan lo shad ve shim shim tan kan ti zo aron thleng ma sa o aron thleng ma sa angkha kan han chiar chi na ni ya in dot ze khan ti khan in ai aron thlen dan in dot ze khan kan chiar chi na ni o chu chu then khatina sms chiar du lo kan lo ti ringo zel te heng te hi a chang chon network ron englo wang a boy chang te hi oma khami wang khan sms te hi ron thlen thua khal ve thin thau chang om thi na ni ti kha kan so ye ni o. तो नेक्स्ट हम जो सुनने जा रहे हैं ये है मोहरा फिल्म से, जिसे हितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट भेजा था मोहरा फिल्म से. ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जिसमें अक्षय कुमार एंड रविनाथ टंडन जी ने किरदार निभाया था. बहुत ही प्यारी फिल्म है. आप स्पेशली हमारे हितेंद्र दोस्त और उनके दोस्तों के लिए हम डेडिकेट करते हैं. आप इसे ध्यान से सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा एंड जहां पर भी है नाचिए झूमे ऐश कीजिए हमारे साथ. तो चलिए सुनते हैं टिप टिप बरसा पानी.

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हितेंद्र जी की ओर से, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजा था. अले विकुंते ही आना जे ज्वाल बोई जानी सु गन वे इन तोंग फो थे रहू वे गंगाई से सिरी द मेमरों. Vi kung te a inge yom chin vong vong hi ke te lutuk a i re re lutuk a klo ngai to lutuk se ni sumo a to pa to pa swarin kanin tong le ta swangin ka hun tem te hi to to klingin min lo nga pui tur khanin kan so ngal se ni su swanin o ming moi te hianin zwal boi itam le ka bulami te o moi Daniela Angela te ta non ti a ming moi te hi so van sweet te tak chu van san hlamoi lut tuk mei ka place sak don ani tu na hian mo hela hi in du don ti hi ka sia a chu van chuan ni lo ngai thla tu te tan khanin le a bik takin kan ti te ang o vi kung te te ming moi te te a din pui te tan khanin kan han than sakani. तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और उम्मीद करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आए. और ये है सनम पुरी जी की आवाज में, कुछ ना कहो.

तो दोस्तों, आप सभी के SMS के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी और जाते जाते यही गाना आप सबके लिए मिलूंगा। इथे तोते सोंग सोंग तांग खान तो न कन गई थाक ताक सुकून लमोई तक मई खा और करोन थन सक छुन सोम जेल से ओनी ओम चांग कनी मुले व दनिया हेमी जो हियान दार क्वालिसन वेटों हियान इन फेसबुक लमा कन पेजा खान इन लाइव प्रोग्राम ओमले लाइव इंटरेक्शन का ओमले दो ननी ओ मिलो इन इन लो थिर छो तुर खान कनी सो मनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM जोय 100.7। आपके साथ है RJ ज्वाल भाई। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मंगठा मुत्तुई वेक उले।